समवेत स्वर में मातृवंदना सुनने के बाद आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में साई भजन, जिसे लिखा है मनोज कुमार ने।

0: और अब कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है सुरेश वाडकर और साथियों के स्वरों में सुभाष जैन अजल की रचना।
1: यहाँ की वायु में बस साई भक्ति की ही सुगंध व्याप्त है, इसीलिए तो जब भी जहां भी किसी भक्त को प्रेरणा मिलती है वो श्रद्धा का दीप जलाए बस शिरडी दौड़ा चला।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें जैव उर्वरकों के संदर्भ में। भारतीय कृषि में गोबर की खाद, कंपोस्ट व हरी खाद पोषक तत्व के परंपरागत स्रोत रहे हैं। पिछले 3 दशक से कृषि में काफ़ी उन्नति हुई है। वैज्ञानिक परीक्षणों से कृषि में उपज बढ़ी है और साथ ही साथ फसलों की आवश्यकता के अनुसार हम उर्वरकों का प्रयोग भी करने लगे हैं। इन सब के बावजूद लगातार उर्वरकों के प्रयोग से जमीन की उपजाऊपन की शक्ति नष्ट हो रही है। इसका कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जो कि चिंता का विषय है। पोषक तत्वों का अधिक दोहन एवं समय पर उसकी भरपाई ना करना और कम भरपाई करना, इससे भी जो जमीन की उर्वरा शक्ति है उसका हनन हो रहा है। किसान भाइयों, ऐसे में अन्य पोषक तत्वों की तलाश एवं उसके उपयोग की आवश्यकता बढ़ गई है। सौभाग्य से प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव उपलब्ध हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर करने, फास्फेट एवं पोटाश के अघुलनशील अवयव को घुलनशील अवस्था में बदलने एवं पौधों के अवशेष को सड़ा गलाकर कार्बनिक पदार्थों में बदलकर पौधों के लिए उपयोगी तत्व बनाने में सक्षम हैं। जब इन सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या जमीन में कम हो जाती है तो इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कृत्रिम साधनों की मदद ली जाती है। इन्हीं को हम जैव उर्वरक या बायोफर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। बायोफर्टिलाइजर आर्थिक दृष्टि से किसानों को काफ़ी सस्ते मिलते हैं। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, नील हरित शैवाल एवं अजोला वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर करने में सक्षम हैं। ध्यान रहे कि प्रत्येक फसल या फसल समूह के लिए अलग किस्म का राइजोबियम प्रयोग में लाया जाता है। राइजोबियम पौधों के साथ सहजीवन व्यतीत करता है, यानी पौधों की जड़ों पर जो ग्रंथियां बनती हैं उसमें राइजोबियम रहता है और इसके बदले में राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर करता है। एजिटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन जमीन में स्थिर करते हैं। ये जमीन में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन इकट्ठा करते हैं। नील हरित शैवाल जलीय पौधा होने के कारण इसका प्रयोग सिर्फ धान की खेती तक सीमित रहता है और इसके उपयोग से खेत को 30 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। किसान भाइयों, जमीन में फास्फोरस जो होता है वो अक्सर अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाता है और पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। जमीन के अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बनाने में सोडोमोनास व बैसिलस नामक बैक्टीरिया तथा पेनिसिलियम व एस्परजिलस नामक फंगस यानी फफूंद मुख्य रूप से काम करते हैं। ये अघुलनशील ट्राइकैल्शियम व रॉक फास्फेट पर निर्वाह करते हुए 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस जमीन को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावे वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा नामक एक फफूंद होता है जो पौधों की जड़ों के साथ उप सहजीवन व्यतीत करते हुए अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बनाने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार से फसल के अवशेषों को सड़ाकर फसल के अंदर के सेलुलोज को सड़ाने में ट्राइकोडर्मा सेल्युमोनास आदि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वे काफ़ी सक्षम हैं। जैव उर्वरक का उपयोग जमीन, बीज एवं पौधों को उपचारित करके किया जा सकता है। यदि बीज को उपचारित करना है तो 500 ग्राम यूरिया चीनी के 400 से 500 मिलीलीटर में घोलकर उसमें 200 ग्राम बायोफर्टिलाइजर मिलाकर 10 से 12 किलोग्राम बीज का उपचार किया जा सकता है। ध्यान रहे कि उपचारित बीज को धूप में ना सुखाएं। मृदा में जैव उर्वरक मिलाने के लिए 3 से 4 किलोग्राम जैव उर्वरक को 90 से 120 किलोग्राम कंपोस्ट खाद में मिलाकर खेत की अंतिम जुताई के समय खेत की मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, जैव उर्वरकों का प्रयोग आपके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है।
0: ये था एग्री टिप्स।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में

आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जहाँ रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी रानी लक्ष्मी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल गुरुवार 21 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान के लिए एमवी नॉर्थ पैसेज कल गुरुवार 21 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा और कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानिकोबार की यात्रा पर कल 21 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और शुक्रवार 22 तारीख को शाम 4 बजे कानिकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल गुरुवार 21 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानी चंगा आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल गुरुवार 21 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल गुरुवार 21 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी हडबे कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी चंगा कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप

0: के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। श्रोताओं, ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार श्रोताओं, इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, कली केवल एक फूल का रूप नहीं, बल्कि नई उम्मीदों, सपनों और मुस्कुराहटों की एक पहचान भी होती है। जैसे एक नन्ही कली धीरे धीरे खिलकर पूरे बाग को महका देती है, वैसे ही जीवन में छोटी छोटी खुशियां हमारे मन को रंगों से भर देती है। और बात हो प्यार भरे एहसासों की, तो मानो हर कली जिंदगी की मुस्कान बन जाती है। भंवरों की गुनगुनाहट और कलियों की खिलखिलाहट हमें यही संदेश देती है कि जीवन में प्रेम, उमंग और ताजगी हमेशा बनी रहनी चाहिए।

दोस्तों, कली जीवन के उस खूबसूरत पड़ाव का नाम है जहां सपने धीरे धीरे आकार लेते हैं। एक नन्ही कली अपने भीतर ढेर सारी उम्मीदें और रंग समेटे रहती है और जब वह खिलती है तो पूरी फिजा महका देती है। दोस्तों, जैसे कली के खिलने का इंतजार हर किसी को होता है, वैसे ही जीवन में अच्छे पलों और रिश्तों के खिलने की चाह भी दिल में बनी रहती है।

दोस्तों, कली यानी सौंदर्य, मासूमियत और खिलने की शुरुआत। और जब किसी कली की खुशबू हवाओं में घुलने लगे तो भवरों का दिल भी मचल उठता है। श्रोताओं, एक कली अपनी अदाओं से हर गली को महका देती है और बेईमान भवरा उसके

दोस्तों, कली यानी सौंदर्य, मासूमियत और खिलने की शुरुआत। और जब किसी कली की खुशबू हवाओं में घुलने लगे तो भवरों का दिल भी मचल उठता है। श्रोताओं, एक कली अपनी अदाओं से हर गली को महका देती है और बेईमान भवरा उसके इर्द गिर्द घूमता फिरता है। तो चलिए फूलों की दुनिया में चलते हैं, जहां हर कली के पीछे कोई ना कोई भवरा जरूर दीवाना होता है।

सुन रहे थे जिसे प्रस्तुत कर रही थी अनीता। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 244वीं कड़ी।

श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्र ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि ने भक्तिपूर्वक श्री राम की वंदना करके उनसे अपने चरणों में अटूट अनुराग देने की प्रार्थना की। शीलवती तथा विनम्र सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसूया के चरणों में सिर नवाकर उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि पत्नी सीता जी की विनम्रता देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। अनुसूया जी ने मधुर और कोमल वाणी में सीता जी के स्त्री धर्म पालन का बखान किया।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 244वीं कड़ी सुन रहे थे। गायिका थी अनुराधा पौडवाल और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। पेश है वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान।

मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके कारण मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 22 मई तक समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत आप कवित्री श्रीमती अंजलि कुमार से उनकी स्वरचित काव्य पाठ सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे राधा सलूजा और इकबाल बानो। 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर विश्वनाथ श्रीखंडे का हिंदुस्तानी शैली में गायन होगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1288वीं कड़ी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी व विश्व मधुमक्खी दिवस पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर शस्त्र लोकम कार्यक्रम होगा। दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे असलम साबरी और साथी। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फरमाइशी फिल्मी गीतों का लाइव फोन आउट कार्यक्रम आप सुनेंगे हेलो डियर फ्रेंड्स, और फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें पेरका गांव के सदस्य द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आप सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। शाम 4:40 पर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। बाहरों की शाम कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे शाम 4:45 पर। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6 बजे, जिसमें डॉक्टर वी पांडे से बातचीत का विषय रहेगा द्वीपों में शकरकंद की खेती। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दर्द भरे नगमे 6:30 पर। 7:20 पर फिल्मी गीत आप सुनेंगे। युवाणी के तहत 7:30 पर कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी व विश्व मधुमक्खी दिवस पर चर्चा तथा सुमित्रा नंद पंत की जन्मतिथि पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत रात 8 बजे, और रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सरगम, व साथ ही विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर चर्चा का विषय कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः नॉर्वेदेशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेष् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमार, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 370-1,79,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिक रूपेण स्वस्य ब्राडगेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, यूनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकला

0: परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुञ्च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशति क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं सार्धसप्तवादने कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए जन सूचनाएं।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 0.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 86% और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.6 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 4:55 पर हुआ व सूर्यास्त का समय रहेगा 5:37। अब जायजा लेते हैं उड़ान संबंधी जानकारी का। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। श्रोताओं, ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, आपको फिर से बता दें, देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सात बजकर 30 मिनट पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत साहित्य दर्पण कार्यक्रम में आप कवित्री श्रीमती अंजलि कुमार से उनकी स्वरचित काव्य पाठ सुन पाएंगे। सवेरे 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गाता चल का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1288वीं कड़ी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक 11:30 पर। दोपहर 1:10 पर महफिले कव्वाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे असलम साबरी और साथी। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर।

जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।

और चेन्नई में थाई व्यापार केंद्र के निदेशक के साथ आतिथ्य से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश पर चर्चा की। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत एकीकृत फसल कटाई पश्चात प्रबंधन परियोजना में किसानों और उद्यमियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पुलिस विभाग की ओर से निकोबार जिले में 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम का उद्घाटन और श्रीकाकुलम में फीडे रेटेड ओपन शतरंज टूर्नामेंट में द्वीप समूह का शानदार प्रदर्शन।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। कोलकाता में थाईलैंड की महावाणिज्य दूत सिरिपोर्न तंतीपथ्याथेप और चेन्नई में थाई व्यापार केंद्र के निदेशक चेक जिनाफाल ने कल लोक निवास में उपराज्यपाल के साथ भेंट की। इस दौरान मत्स्य पालन और पर्यटन के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के अवसरों, सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संभावनाओं और प्रशासन द्वारा खोले जा रहे विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से लग्जरी रिजॉर्ट, गोल्फ कोर्स और आतिथ्य से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। उधर INHS धनवंतरी के कमांडिंग ऑफिसर सर्ज कैप्टन अनुज सिंघल ने अपने स्थानांतरण के अवसर पर कल लोक निवास में उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी से विदाई भेंट की। अंडमान निकोबार वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ ने हाल ही में कोलकाता स्थित रॉयल थाई वाणिज्य दूतावास के साथ बैठक की। बैठक के दौरान थाईलैंड और द्वीप समूह के बीच हवाई और समुद्री दोनों मार्गों से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई, ताकि पर्यटन, व्यापार, निवेश और लोगों के आपसी मेलजोल को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही प्रशासन और फुकेत सरकार के बीच हुए ट्विन सिटी समझौते को भी पुनर्जीवित करने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत एकीकृत फसल कटाई पश्चात प्रबंधन परियोजना में किसानों और उद्यमियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत बागवानी उत्पादों की हैंडलिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, परिवहन, क्योरिंग और पकाने, अल्पकालिक भंडारण और दीर्घकालिक भंडारण जैसी गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना में प्री कूलिंग यूनिट, ऑन फार्म पैक हाउस, मोबाइल प्री कूलिंग यूनिट, स्टेजिंग कोल्ड रूम, नियंत्रित वातावरण सुविधाओं के साथ या उनके बिना कोल्ड स्टोरेज यूनिट, रेफ्रिजरेटेड वैन कंटेनर और प्राथमिक मोबाइल प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना शामिल है। पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 50% तक क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ व्यक्तिगत उद्यमियों, सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा। योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में अधिकतम 12,50,000 रुपये से लेकर 80,00,000 रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। वहीं कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए शंका के आधार पर अलग अलग दरों में सब्सिडी दी जाएगी। इच्छुक लाभार्थी कृषि विभाग से संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि निदेशालय से संपर्क किया जा सकता है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा समग्र क्षेत्रीय केंद्र में प्रधानमंत्री दिव्यांगता केंद्र योजना लागू की जा रही है। इस संबंध में पात्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। इन सहायक उपकरणों का उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की गतिशीलता, पहुँच, संचार, शिक्षा और दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करना है। पात्र लाभार्थी निर्धारित आवेदन पत्र और संबंधित सहायक दस्तावेजों को जमा कर आवश्यक सहायक उपकरणों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र सामाजिक कल्याण निदेशालय अंडमान निकोबार प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा ये आवेदन पत्र PMD के CDPO, मुख्य सेविकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी सभी कार्य दिवसों में प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण निदेशालय से संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है पुलिस और चेस। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM

100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार पुलिस ने निकोबार सतत विकास और दूरदराज इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए जिले के 4 दूरदराज के पुलिस आउटपोस्ट सवाई चौरा मकाचुआ और अफराबे में 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम लगाए हैं। इसका उद्घाटन पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल ने किया। पुलिस विभाग ने द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इंडिया फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता ज्ञापन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत पहचाने गए 4 आउटपोस्ट पर हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम लगाने के लिए किया गया था। सोलर पैनल अब वे पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इस पहल से खराब मौसम में भी बिजली की लगातार आपूर्ति होती है। आंध्र प्रदेश स्थित श्रीकाकुलम में फीडे रेटेड ओपन शतरंज टूर्नामेंट का कल समापन हो गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 330 खिलाड़ियों ने भाग लिया। द्वीप समूह के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। विग्नेश बी ने अंडर 9 लड़कों की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि त्रिषा बी ने सर्वश्रेष्ठ महिला श्रेणी में चौथा स्थान प्राप्त किया। भविष्य एस और हिमांशी के ने क्रमशः अंडर 13 और अंडर 9 लड़कियों की श्रेणियों में 5वां स्थान हासिल किया। समापन समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं को ट्रॉफियां और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दक्षिण अंडमान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि भूमि पर अवैध गतिविधियों के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में कृषि भूमि के विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और जमीन को समतल किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है और द्वीप समूह भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन 1966 की धारा 151 तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही सभी व्यक्तियों और भूमि डेवलपर्स को चेतावनी दी गई है कि वे ऐसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उन्हें जमीन से बेदखल करना और उनके किरायेदारी अधिकारी को समाप्त करना शामिल है। प्रशासन ने आम जनता को सलाह दी है कि किसी भी जमीन की खरीद बिक्री से पहले संबंधित बातचीत राजस्व अधिकारियों से उनकी वास्तविक और कानूनी स्थिति की पुष्टि अवश्य करें। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने फोरशोर रोड फिनिक्स बे से चाथम मेगापोर्ट जंक्शन के पास स्थित भवन में रेस्टोरेंट संचालन के लिए ई निविदा जारी की है। इच्छुक प्रतिभागी ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निविदा से जुड़े नियम और शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 5 जून दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है। इसके बाद उसी दिन शाम 4 बजे तकनीकी बोली खोली जाएगी। कार निकोबार में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत ICDS ट्राइबल प्रोजेक्ट की ओर से प्रोजेक्ट असिस्टेंट के एक पद के लिए संविदा आधार पर स्थानीय उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवारों को प्रतिमाह 18,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। उम्मीदवारों का स्नातक अथवा प्रबंधन सामाजिक विज्ञान या पोषण विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना आवश्यक है। अधिक जानकारी विभाग से प्राप्त की जा सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल ने थाईलैंड की वाणिज्य दूत और चेन्नई में थाई व्यापार केंद्र के निदेशक के साथ आतिथ्य से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश पर चर्चा की। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत एकीकृत फसल कटाई पश्चात प्रबंधन परियोजना में किसानों और उद्यमियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पुलिस विभाग की ओर से निकोबार जिले में 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम का उद्घाटन और श्रीकाकुलम में फीडे रेटेड ओपन शतरंज टूर्नामेंट में द्वीप समूह का शानदार प्रदर्शन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम।

इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा भारत वीरों की भूमि है, जहाँ देश के लिए जीना और मरना सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। यहाँ के वीर अपनी सांसें भी कर देते हैं वतन के नाम, यही है वीरों का असली काम। जब तक जिंदा है उनका ये जुनून, तब तक महफूज है अपना हिंदुस्तान।

दोस्तों, हमारा देश एकता का प्रतीक है, जहां अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति मिलकर प्यारा सा रंग बनाते हैं, और लोग दूर रहकर भी उनका दिल यहीं आता है, क्योंकि अपने देश के साथ मिट्टी का ये रिश्ता कभी न टूट पाता है। चाहे जितने भी दूर हम चले जाए, ये देश हमें हर पल बुलाता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

ये नहीं बढ़ता। मुश्किलें से जो लड़ जाए वो कभी पीछे नहीं मुड़ता। सफलता उन्हीं के हिस्से आती है जो हालातों के आगे कभी नहीं झुकता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में।

0: उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में अभी आपने दीदार फिल्म का ये गीत सुना, जिसे लिखा था समीर ने व संगीत से सजाया था आनंद मिलिंद ने। श्रोता, इस गीत के बाद चलिए रुख करते हैं साहित्य दर्पण कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं कवित्री श्रीमती अंजलि कुमार से उनकी स्वरचित कविताओं का पाठ।
1: सुप्रभात, मैं अंजलि आज इस प्रोग्राम में शामिल होने को अपना सौभाग्य समझते हुए एक स्वरचित कविता के माध्यम से एक विवाहित लड़की के विचारों को प्रकट करना चाहूँगी, जो विवाह के पश्चात अपने पिहर या अपने माता पिता से मिलना चाहती है, पर उसके पति उसे इजाज़त नहीं देते और इस बात की अहमियत को कतई समझ नहीं पाते कि वक्त वक्त पे उसका मिलना कितनी मान्यता रखता है, कितना अहम है। वह इस कदर टूट चुकी है कि सिवाय लिखने के उसे और कुछ नहीं सूझता, क्योंकि वह इन जज्बातों को किसी के साथ बांटना चाहती है और एक डायरी से अच्छा उसे और कोई साथी नहीं मिलता। तो आइए रोशनी डालते हैं उन पन्नों पर। दिया जला, ये कलम आज मुद्दत के बाद हाथ आई है। ये कलम आज मुद्दत के बाद हाथ आई है, जो न जाने कितने दिनों से बनी परछाई है। ये कलम आज मुद्दत के बाद हाथ आई है, जो न जाने कितने दिनों से बनी परछाई है। न बयाने जिगर हो पाया न हाले तन्हाई, न बयाने जिगर हो पाया न हाले तन्हाई, बस यूं ही कटी सहर और ये शामें हर जाई। न बयाने जिगर हो पाया न हाले तन्हाई, बस यूं ही कटी सहर और ये शामें हर जाई। अब तो बहने दो, अब तो बहने दो इन अश्कों को, अब तो बहने दो इन अश्कों को कागज़ के इन पन्नों पे, अब तो बहने दो इन अश्कों को कागज़ के इन पन्नों पे, रंगने दो इस स्याही से शब्दों के इन जज्बों को। अब तो बहने दो इन अश्कों को कागज़ के इन पन्नों पे, रंगने दो इस स्याही से शब्दों के इन जज्बों को। रुक रुक के यूं जो बहते हैं सागर में लेते गोते हैं, रुक रुक के यूं जो बहते हैं सागर में लेते गोते हैं, कभी छलक छलक जो बहते हैं न जाने क्या कुछ कहते हैं, कभी छलक छलक जो बहते हैं न जाने क्या कुछ कहते हैं, न जाने क्या कुछ कहते हैं। एक सन्नाटा सा छाया है, एक सन्नाटा सा छाया है जैसे ख्वाबों में कोई आया है, एक सन्नाटा सा छाया है जैसे ख्वाबों में कोई आया है, जो जी चाहे वो लिख डालो रंग सभी इसमें भर डालो, जो जी चाहे वो लिख डालो रंग सभी इसमें भर डालो, फिर न शायद नसीब हो ये कागज़ कलम ये दवात और ये तन्हाई। ये अश्क यूं जब बहते हैं, ये अश्क यूं जब बहते हैं बयाने जिगर करते हैं, जिन हाथों में पली बड़ी, जिन हाथों में पली बड़ी यूं कली खिली और फूल बनी, सींचा इसे जिन हाथों ने और सहलाया फिर रातों में, जिन हाथों में पली बड़ी यूं कली खिली और फूल बनी, सींचा इसे जिन हाथों ने और सहलाया फिर रातों में, कांटा कोई न चुप पाए ऐसे पथ पर टहलाया, कांटा कोई न चुप पाए ऐसे पथ पर टहलाया, हर तूफान से लड़ने का साहस जो बस सिखलाया, कभी कभी इन शब्दों से भी जीबर के बहलाया। आज आलम कुछ बदला है, आज आलम कुछ बदला है, फूल कहाँ और बगिया कहाँ, कहाँ किसी को है परवाह। आज आलम कुछ बदला है, फूल कहाँ और बगिया कहाँ, कहाँ किसी को है परवाह। टूटी डाल से यूं बिछड़ गई, टूटी डाल से यूं बिछड़ गई, पत्तों के संग बिखर गई, ना खबर हुई उस माली को जिसने प्यार सिखाया हर डाली को, ना खबर हुई उस माली

0: को जिसने प्यार सिखाया हर डाली को, सूनी बगिया लिए जो बैठा हर दिन रात तूफानी को। काश तुम भी फूल बनो, काश तुम भी फूल बनो और भूलो अपने माली को। काश तुम भी फूल बनो और भूलो अपने माली को, बिलक बिलक के वो भी रोए केवल तुम्हें देख पाने को। काश तुम भी फूल बनो और भूलो अपने माली को, बिलक बिलक के वो भी रोए केवल तुम्हें देख पाने को। तुम्हें न कोई मिलने दे, न बतियाने दे उस माली से। तुम्हें न कोई मिलने दे, न बतियाने दे उस माली से। बस यूं कोने में पड़े रहो, झलक को भी तरसो तुम। बादल बन के बरसो तुम, बिजली बन के गरजो तुम, तूफानों में बरसो तुम, फिर भी पानी को तरसो तुम, फिर भी पानी को तरसो तुम। कभी ये फूल तुम्हारा है, इस भूल का ना लो सहारा तुम। कभी ये फूल तुम्हारा है, इस भूल का ना लो सहारा तुम। तुम्हारा होके भी तुम्हारा नहीं है, उन खुशियों का बसेरा नहीं है। खो दिया आज पाकर भी कदर ना जानी माली की, जिसने जीवन भर सींचा था इस डाली को। जिसने जीवन भर सींचा था इस डाली को, खबर ना ली उन दीवानों की। जिसने जीवन भर सींचा था इस डाली को, खबर ना ली उन दीवानों की। यूं ना बच पाओगे जनाब, कष्ट तो तुम भी पाओगे। यूं ना बच पाओगे जनाब, कष्ट तुम भी पाओगे। सृष्टि की चपेट में जल्दी ही आ जाओगे। मिलना हुआ तो मिलेंगे ज़रूर, दास्ताने सफ़र सुनेंगे ज़रूर। मिलना हुआ तो मिलेंगे ज़रूर, दास्ताने सफ़र सुनेंगे ज़रूर। किस्मत यूं ही संजोए है, मोती तो मोती संग ही पिरोए हैं। जी करता है लिखती जाऊं, बस कुछ ना कहूं और कुछ ना बताऊं। जी करता है लिखती जाऊं, बस कुछ ना कहूं और कुछ ना बताऊं। अश्क यूं ही बहते रहें, तन्हाई को सहते रहें। जी करता है लिखती जाऊं, बस कुछ ना कहूं और कुछ ना बताऊं। अश्क यूं ही बहते रहें, तन्हाई को सहते रहें। ना ब्याहना अपनी बच्चियों को, ना ब्याहना अपनी बच्चियों को। इन मानव के हाथों में हर माँ बाप को प्यार करेगी जी भर के वो दिन रातों में। उसी के हाथ में देना हाथ, उसी के हाथ में देना हाथ, प्यार की जो लाए सौगात। वरना शौक से वापस ले जाए अपनी बारात। गांठ बांध के रख लो फिर, इस बच्ची को हर लो तुम, अपने आंचल में ले लो तुम, अपने आंचल में ले लो तुम।
1: श्रोताओं, अभी आप साहित्य दर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत कवित्री श्रीमती अंजलि कुमार से उनकी स्वरचित कविताओं का पाठ सुन रहे थे। श्रोताओं, अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat.

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग अंडमान।

आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, तू पास हो तो हर लम्हा लगता है जरूरी। बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना वंश फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के, बोल समीर के थे व धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। अब सुनते हैं नायक फिल्म का गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी व संगीतकार हैं ए आर रहमान। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों पे, जैसे भीड़ में कोई अपना मिल जाए दुआओं में।

दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि जो सपनों को सच करने की जिद रखता है वो किस्मत को भी झुका देता है। इस प्यारे से विचार के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत। गुड मॉर्निंग अंडमान।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रूपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
4: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठक

0: में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
2: India is accelerating towards universal health coverage.
3: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: Pandemic preparedness and emergency responses.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को यह जानकारी दी।
6: हमें जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
7: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.5

0: 6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रूपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं राधा सलूजा के गाए चंद गीतों से, जिसे लिखा है के. शैलेंद्र ने।

राधा सलूजा को सुनने के बाद अब पेश खिदमत है इकबाल बानो की आवाज़ में चंद गज़लें, जिसे लिखा है गालिब ने।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने राजपूत फिल्म से लिया है। स्वर दिया है किशोर कुमार और साथियों ने, बोल आनंद बख्शी के हैं व धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: किशोर कुमार और रेखा की आवाज़ों में आइए सुनते हैं कहानी किस्मत की फिल्म का गाना, जिसे लिखा है राजेंद्र किशन ने व संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा आई का ओए कर्नल सिंह, ओए कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं गुलामी फिल्म का गाना। शब्दकार गुलजार व आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में गाने और भी हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 30,000।
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
3: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आई।
4: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
3: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
4: मैं 14 साल की हूँ।
3: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
4: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
3: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
4: धन्यवाद दीदी।
3: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
5: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
7: Nexa.
0: ब्रेक के बाद फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है।

आनंद बख्शी का लिखा एवं आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ अभी आपने लव स्टोरी फिल्म का ये गीत सुना। स्वर दिया था लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। श्रोताओं और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत कातिलों के कातिल फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, बोल राजेंद्र किशन के हैं व धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको विश्वनाथ श्रीखंडे का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनवा रहे हैं। इनके साथ तबले पर पीके चैटर्जी, हारमोनियम पर शक्तिपदा नाग और तानपुरे पर के अतिकेशवम ने संगति की है। तो आइए सुनते हैं विश्वनाथ श्रीखंडे का हिंदुस्तानी शैली में गाया राग अहिर भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप विश्वनाथ श्रीखंडे का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन रहे थे।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म के गीत से, जिसे गाया है विशाल ददलानी ने, बोल जावेद अख्तर के हैं व धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

विशाल और शेखर के संगीत निर्देशन में तैयार लीजिए अब सुनिए बुढ़ा होगा तेरा बाप। इस फिल्म का ये गीत अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बोल स्वानंद किरकिरे के हैं।

अपेश है स्वानंद किरकिरे का लिखा एवं अजय अतुल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है सिंघम।

बॉडीगार्ड, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को शुरू में पिरोया है ऐश किंग और क्लिंटन सिरजू ने, बोल शाबिर अहमद के हैं, वधुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

शारिब दोषी के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए फिर इस फिल्म का ये गीत, तोशी की आवाज़ में बोल कुमार के हैं।

मौसम, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत शाहिद मालिया की आवाज़ में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

मौसम, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। शाहिद मारिया की आवाज़ में इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्तिक और बॉम्बे जयश्री की आवाज़ों में फोर्स इस फिल्म का गीत। गीत रचना जावेद अख्तर के हैं व संगीतबद्ध किया है हरीश जयराज ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गाता चल को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं मिली जुली आवाजों में स्पीडी सिंग्स, इस फिल्म का ये गीत।
3: Yeah, we were always told growing up we had to strive to be the best. Always strive for success, and second place is not an option. That's what we were told. So no matter what came up in my life, I got through.

सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में तैयार लीजिए अब सुनिए हम तुम शबाना इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुरों में पिरोया है अनुष्का।

डबल धमाल। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ों में। गीत एवं संगीत रचना आनंद राज आनंद के हैं।

अभी आप मोहम्मद इरफान और अरिजीत की आवाज़ों में ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मर्डर टू। और अब अंत में आइए सुनते हैं शान की आवाज़ में मी मामू एंड सेवन, इस फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1288वीं कड़ी।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम।

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो दीदी
1: दीदी
2: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
0: हाँ दीदी।
1: अरे

0: तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी, सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
0: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी, वो तो मैंने...
0: राजू, पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी, ये तो मैंने पढ़ा है, मगर...
0: मगर क्या? अच्छा, अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी, ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ?
1: हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिक काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिक काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिक काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी दे।
0: चलिए दादाजी।

0: नहीं सोया था?
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
2: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
3: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
2: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
3: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
2: हाँ दीदी,
3: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
2: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: संग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1228वीं कड़ी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है चमत्कार। इस फिल्म के गीत से आवाजें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। आनंद बख्शी के

अभी आप कुमार सानू और अलका याग्निक को सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जमाना दीवाना। और अब आइए सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म जुर्म का ये गीत। बोल इंदिवर के हैं, वह धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

अब पेश है इंदिवर का लिखा एवं बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है नया सावन।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

ശാസ്ത്രലോകത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ശാസ്ത്രലോകം

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यु बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेइचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमरीका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमरीका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। महफिले कवाली, इस कार्यक्रम में आज के कवाल हैं असलम साबरी और साथी।

अभी आप महफिल कवाली कार्यक्रम में चंद कवालियाँ सुन रहे थे। आज के कवाल थे असलम साबरी और साथी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आपके नाम फिल्मी पैगाम।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन ले, 9474234000। तो चलिए देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला SMS, जिसे हमें भेजा है असम से बेलकॉन मुंडा ने। ये सुनना चाहते हैं होगी प्यार की जीत, इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण ने।

आइए अब सुनते हैं सुनिधि चौहान और शारिब सिंह की आवाज़ों में फिल्म जित का ये गीत, और इस गाने की फरमाइश की है हमें विम्बर लिगन से डेविड और सोनी ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज़ और बेबी चाहत ने ये सुनना चाहते हैं फिल्म फना का ये गीत, और इस गीत को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरे हमदम मेरे दोस्त। इस फिल्म का ये गीत और इस गाने की फरमाइश की है हमें पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने।

आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म गैम्बलर का ये गीत, और इस गाने की फरमाइश की है हमें नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमार थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी गर्ब बेबी वामिका और वाणी थांडी ने।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की।

0: उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को

0: देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेइचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेइचिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। अतः मछुआरों को 22 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: dear friend, friend, friend.
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव फोन और फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और फिल्मों के नाम के साथ इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। श्रोताओं, इस नंबर पर आप अपने पते के साथ अपना नाम के साथ इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो डियर फ्रेंड्स।
2: नमस्कार मैडम,
1: नमस्कार। हमारी बात हो रही है इंद्रभान सिंह जी से, जो कि है छत्तीसगढ़ से।
2: मैं चिरमिरी कुरासिया कागजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के इंद्रभान सिंह होगा
1: जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: इंद्रभान
1: जी, आजकल इन दिनों आप क्या कर रहे हैं वैसे?
2: मैं मैडम मैं ड्यूटी परेड में हूँ, सर्विस करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ और ड्यूटी परेड में ही कई मैडम में फोन करता हूँ, रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूँ, ईमेल में जुड़ता हूँ, बैंक में भी सुनता हूँ, प्रसारण भी सुनता हूँ, छोटा मोबाइल में प्रसारण सुनता हूँ, बड़ा मोबाइल में बातचीत करता हूँ।
1: जी जी जी। तो आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है वारंट
1: जी
2: और गीत की बोल है सुनो बराती, गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, देवानंद जी का फिल्म का गाना है
1: जी जी।
2: और सबसे पहले गीत आपको आकाशवाणी विजयपुर और निकुमार श्रोताओं को, आपके परिवार जन के रिश्तेदारों को, श्रोताओं को, पूरे उद्घोषक भाई बहनों को, सभी लोगों को विजय कराऊँ, पूरे श्रोताओं को भी विजय कराऊँ, धन्यवाद। और मैं इंतजार कर
1: तो चलिए इंद्रभान सिंह जी सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है राजू लावानिया जी से, जो कि है उत्तर प्रदेश से। कैसे
1: जी, बिल्कुल
0: हैं
1: दीदी।
0: आप?
1: जी दीदी, ठीक हैं। और हमारी आकाशवाणी श्री विजयपुरम टीम कैसी है?
0: जी, यहाँ पर भी परिवार सकुशल, सब मंगल है। जी
1: जी,
0: बताइए,
1: गर्मी
0: जी
1: आपके यहाँ मौसम
0: इन
1: कैसा है दीदी?
0: दिनों तो बारिश हो रही है कहीं कहीं पर।
1: यहाँ तो
0: वैसे
1: बहुत गर्मी है, बहुत
0: जी
1: गर्मी है
0: आज
1: दीदी।
0: फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, कभी
1: ये
0: यहाँ का मौसम बदलता रहता है ना।
1: बहुत अच्छी बात है, कहीं तो मौसम ठीक है। यहाँ तो बीच में थोड़ी सी ठंडक जरूर हुई थी,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: अब बहुत गर्मी है।
0: जी जी जी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द ही आपको ठंडक का बरसात देखने को मिलेगी, है
1: जी,
0: ना
1: बहुत बहुत
0: जी।
1: शुक्रिया दीदी
0: गर्मी से
1: आपका।
0: राहत मिलेगी, है ना। हम भी यही चाहते हैं कि हर जगह सब सकुशल मंगल रहे और गर्मी से सबको राहत मिले, है ना।
1: जी बिल्कुल
0: जी
1: दीदी।
0: जी जी और इन दिनों क्या कर रहे हैं वैसे आप?
1: दीदी मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, घर पर ही रहता हूँ।
0: हाँ जी जी
1: रेडियो
0: जी
1: सुनता हूँ, रेडियो सुनने का मुझे बचपन से ही शौक है।
0: जी
1: जब
0: जी
1: चिट्ठियों से हम फरमाइशें भेजते थे तब से जुड़े हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बताइए, आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: इनका नाम है नीला आकाश और गाने के बोल हैं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं।
0: जी, बहुत ही खूब। और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी नहीं, हमारी प्यारी प्यारी दीदी और पूरी रेडियो श्री विजयपुरम टीम और सभी
0: जी,
1: श्रोता जहाँ तक
0: शुक्रिया।
1: हमारे इस आकाशवाणी की पहुँच, सभी शामिल।
0: जी, तो चलिए सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू दीदी, नमस्कार।

0: Hello, dear friends. Hello. Hello, dear friends. Hello. Hello.
1: Hello, namaste.
0: जी नमस्कार, हमारी बात हो रही है मोहन लाल प्रजापत जी से, जो कि है
1: जी राजस्थान से, खम्बाघणी.
0: जी खम्बाघणी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया मैम जी.
0: जी, और इन दिनों क्या कर रहे हैं आप?
1: हाँ, तो किराना की रेड लगाते हैं और आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं.
0: जी, कैसा लगता है आपको हमारा कार्यक्रम?
1: बहुत बढ़िया है मैम
0: जी. तो चलिए बताइए, आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं अपने दोस्तों
1: से? का नाम है आशा.
0: जी,
1: शीशा हुई आती लाठी टूट जाता है.
0: और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ, हेलो फरमाइश, एक का रेडियो के तमाम साथी है और दरिया ऊषा बाला देवी प्रजापत.
0: जी जी, तो चलिए सुनते हैं सबों के साथ ये गीत. हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद.

0: हेलो डियर फ्रेंड्स। हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है
1: नमस्कार
0: लतीफ़
1: मैडम,
0: अहमद जी
1: मेरा
0: से।
1: सोना मार्च लतीफ हम लेना।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: जी, हम भी अच्छे हैं। और क्या कर रहे हैं
1: हाँ,
0: इन दिनों आप?
1: बस अपने घर के काम यहीं करते हैं।
0: जी, आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी धीमी सी आ रही है।
1: हाँ, नहीं, आपकी आवाज कर रहा हूँ।
0: जी, बता दीजिए, आज के इस
1: जी,
0: कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: ओ मेरी महबूबा।
0: जी, धर्मवीर से,
1: हाँ
0: जो कि है फिल्म धर्मवीर। जी, आप अपने
1: हाँ जी,
0: दोस्तों का
1: बोलो
0: नाम
1: मैम।
0: लेना चाहेंगे?
1: दिल्ली से धर्मवीर अंकल है।
0: अच्छा, तो चलिए
1: हाँ,
0: सुन।
1: उनको मैं सुनाना चाहता हूँ।
0: अच्छा, तो चलिए सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। चलिए मिलते हैं अगले श्रोताओं से। हेलो डियर फ्रेंड्स
1: जी, दीदी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार, हमारी बात हो रही है राम बाबू जी से जो कि है भोपाल से।
1: हाँ जी दीदी, नरेला दाम पर भोपाल।
0: जी कैसे हैं आप?
1: जी दीदी बहुत बढ़िया हूँ, प्रोग्राम सुन रहा था आपका।
0: जी बहुत अच्छी बात है, कैसे लग रहा है?
1: बहुत शानदार गाने बज रहे हैं, बिल्कुल आनंद आ रहा था और मेरे पास कॉल आया, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी जी हमें भी आपसे बातें करते हुए बहुत अच्छी लग रही है। और इन दिनों क्या कर रहे हैं वैसे आप?
1: जी दीदी,
0: इन दिनों क्या कर रहे हैं वैसे आप?
1: जी दीदी फ्री हुए हैं अभी, बिल्कुल गर्मियों का आनंद ले रहे हैं, किसानी करते हैं।
0: अच्छा, गर्मियों का आनंद ले रहे हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी
1: हर
0: जी
1: मौसम का एक आनंद होता है।
0: हाँ जी जी सही कहा आपने।
1: क्या है, गाँव में जिन लानों में बैठे हैं सभी मित्र भाई सुन रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो आनंद ही लेना होता है।
0: जी जी जरूर। अब बता दीजिए आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है छोरी सुल्ताने को बोली आदत मेरी याद आई।
0: जी जी
1: और दीदी कुछ मित्रों को भी याद करना
0: जरूर
1: चाहूंगा।
0: जरूर।
1: जी दीदी, मित्र सुन रहे हैं मेरे, केसरी सिंह राजपूत जी, गरीदास सिंह लोधी जी, भगवान सिंह परमार जी, भारत सिंह अहरवाल जी, आशुतोष देवनाथ जी, संगीता देवनाथ जी और अविनाश जी दीदी
0: जी
1: और मांगीलाल चंदेल जी, आपके लिए रहेगा। और पूर्णिमा दीदी हैं हमारी विजयपुरम से ही, उनके लिए रहेगा।
0: तो चलिए सबों के साथ सुनते हैं गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी दीदी नमस्कार, धन्यवाद आपने कॉल किया।

0: जी नमस्कार, हमारी बात हो रही है जी वेलप्पा राव जी से, जो कि है श्री विजयपुरम की डॉलीगंज क्षेत्र से।
1: जी, डॉलीगंज पीपल।
0: जी जी कैसे हैं आप
1: जी मैडम? अभी
0: जी, और क्या करते हैं वैसे आप?
1: मैं सर्विस करता हूँ आपकी ड्यूटी, खाना खाकर बैठा हूँ आपको।
0: अच्छा
1: खाना खा
0: जी जी और हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस वक्त, है ना? कैसा लग रहा है आपको हमारे कार्यक्रम?
1: मेरे तो सारे भी सुनते रहते हैं। अभी थोड़ा चेंजेस होती है मैडम,
0: जी आपकी आवाज कट कट कर आ रही है जी। हेलो जी जी बोलिए। जी जी जी आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: मेरा मोहरा है। मोरा मोरा।
0: जी जी मोहरा फिल्म का
1: हाँ,
0: गाने की बोल। जी जी जी ना कजरी की धार। जी जी और अपने दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: अभी तो दोस्त ये हैं, या तो हमारे एरिया में
0: वेलप्पा राव जी, आपकी आवाज़ कट कट कर आ रही
1: पूरा
0: है।
1: कट गया।
0: जी जी जी तो चलिए सुनवा रहे हैं ये गीत, सुनिए और आनंद लीजिए इस गीत का।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स. हेलो
1: हेलो डियर फ्रेंड
0: जी, नमस्कार. हमारी बात हो रही है धर्मवीर जी से, जो कि हैं दिल्ली से.
1: जी जी जी सही पहचाना आपने सुनीता जी,
0: जी
1: क्योंकि आपने जो हमारे को शुरुआत में ही अपना परिचय दिया था, बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे जो कार्यक्रम हमारे साथ प्रस्तुत कर रही हैं, कौन है हमारी, क्योंकि आप लोगों का परिचय होने से कार्यक्रम में और अच्छा जो हमारे को मजा आता है अच्छी, क्योंकि हमें टेस्ट का पता नहीं चल पाता कि इतना बढ़िया कार्यक्रम कौन प्रस्तुत करके जा रहा है.
0: अच्छा, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद. आपने इतना मुझे सराहाया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: क्योंकि हम दिल्ली में सुनते हैं अपने दिल्ली के लोकल कार्यक्रम, तो उसमें जो यहाँ की एंकर प्रस्तुतकर्ता होती हैं तो उनका अपना अलग अंदाज होता है. कृपा करके आप दिल्ली के कार्यक्रम सुनेंगे तो आपको जानकारी मिल पाएगी किस ढंग से उनका परिचय होता है और हम लोग उनका आनंद लेते हैं.
0: जी जरूर जरूर, हम सुनते हैं जी. और इन दिनों क्या कर रहे हैं धर्मवीर जी आप?
1: सुनीता जी, मैं ये सही बताऊं तो मैं तो रिटायर हुआ हूं और बाकी हमारे बेटर की दिल्ली में गांधीनगर की जो एशिया में सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़े की मार्केट है, तो वो उसी मार्केट में हम रहते हैं. वहीं बेटे की शॉप है, वहीं वो लेडीज सूट का उसका अपना.
0: अच्छा, तो आपकी दुकान है और पूरे दिन आप उसी में बिजी रहते हैं, है ना? और
1: जी जी, बस थोड़ा हम भी थोड़ा सहयोग करते रहते हैं, बाकी बच्चे संभाल रहे हैं तो उनका काम ही है.
0: अच्छा अच्छा, तो चलिए, और बताइए आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: एक पुराना सॉन्ग है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, बहुत ही अच्छे ढंग से दर्द वाले अंदाज में गाया गया गाना था, महुआ फिल्म का, तेरे वादे क्या हरे.
0: जी जी जी,
1: मेरी महुआ.
0: जी जी,
1: टाइटल सॉन्ग है.
0: जी जी जी, और आप अपने दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ जी सुनीता जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपको सुनाएंगे. आपने हमारे को गाना ढूंढ के दिया और हमारे बेटे हैं केशव और नीति, पूर्णिमा जी हैं, आदित्य प्रकाश जी हैं, लोकेंद्र वर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, संदीप मक्कर, करणवीर जी और गजराज लोधी, केसरी सिंह, भगवान सिंह, और एक हमारे और मित्र है रमेश प्रजापति, राजेंद्र सैनी
0: जी जी,
1: और राकेश गोल्डी और लतीफ. अभी उनकी कॉल आई थी, उन्होंने मेरे नाम का ही गाना चलाया.
0: हाँ जी,
1: तो आपने भी शुरू में मेरा नाम ले लिया था तो सुन के अच्छा लगा.
0: जी जी,
1: और बाकी एक और लिसनर है सुतवा भट्टाचार्य, इनका काफी दिन बाद हमारा हमको याद आई है, और आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ, और आप सभी हमारे मित्र हैं, सतमी कुंडू जी, मोनिका जी, और हमारे एक बुल्टी दास जी, सभी को मैं सुनाना चाहूंगा.
0: जी जी,
1: और जो रह गए
0: जी, तो
1: और संदीप मक्कर जी का हमारे कुछ उधार बाकी है.

0: उनको हम अपने घर दिल्ली इनवाइट करेंगे
1: जी, जी,
0: तो
1: जी,
0: उनकी
1: जी.
0: हमारे को पार्टी देनी बाकी है क्योंकि हमने
1: जी.
0: उनकी दावत खाई थी. अगले महीने हम उनको बुलाएंगे.
1: जी जी,
0: तो बहुत धन्यवाद आपका.
1: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. चलिए सुनते हैं ये गीत.
0: सुनीता जी, एक बात और कह दूं, कॉल तो अब लगेगी नहीं, काफी समय लग जाएगा.
1: जी जी,
0: और 27 मई की हमारे लतीफ मियाँ की ईद आने वाली है. सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की एडवांस में मैं
1: बधाई दे रही हूँ. जी जी जी, हमारी तरफ से भी आपको एडवांस में. जी जी.

हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? श्रोताओं, लग रहा है लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: उन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: विविध भारती
2: FM 3 विजयपुरम
3: 100.9 आपका हम सफर।

0: विविध भारती FM 3
1: विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रिश्तों का आधार हमेशा आपसी सम्मान और प्रेम से होता है। कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं, दिल के सुकून से बनते हैं, जहां बातों से ज़्यादा खामोशियां समझी जाती है।

श्रोताओं, गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ते पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खोना।

श्रोताओं, अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की ज़रूरत नहीं होती, बस दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक जो निभा सके और दूसरा जो उसे समझ सके।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। आज की अपनी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलामन एनजे रॉकर हमांग एंगे रे तका लमक तेलनी मीडियम वे 438.6 मीटर 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलनी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिनका तलोनी एंग हरा

0: Tigak nyawe holi akiro non tahi meneha anghi tin keke ingi program ngai vetum kekro re tahi na Thomas Upsani, Robert, Nathaniel the Mary Grace. Hoi hang ngatal ngaha angin nga sintang amu heken hurit e hang rongi takasata i the fan kan ro tala harap ngai in.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 4:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 11वीं कड़ी।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। दोस्तों, आज के समय में व्यस्त जीवन शैली, बढ़ती महंगाई और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के कारण सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस लोगों की आदत बन चुकी है। बिना किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लिए लोग फार्मासिस्ट को समस्या के लक्षण बताकर दवाई ले लेते हैं। हालांकि ये आदत गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। आज हम इस लम्हे प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर से बिना सलाह लिए दवाइयों का सेवन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। ड्राई कॉफ, टाइटनेस इन द चेस्ट, गले में दर्द और खराश के साथ कफ निकलने पर कफ सिरप लिया जाता है, लेकिन कफ सिरप के कारण सुस्ती, नौजिया, घबराहट, याददाश्त में कमी जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर के सलाह लिए कफ सिरप न लें। मामूली खांसी से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुकसान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए लैक्सेटिव मेडिसिन इस्तेमाल में लाया जाता है। साधारण तौर पर किसी भी डिलीवरी या सर्जरी के पहले पेट साफ करने के लिए ऐसी दवाएं दी जाती है, लेकिन इन दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन, लैक्सेटिव कोलाइटिस, लूज मोशन, किडनी में स्टोन और हार्ट की मसल्स में कमजोरी हो सकती है। आमतौर पर बुखार और किसी भी तरह के एलर्जी से होने वाली जुकाम की स्थिति में ऐसी दवाइयां दी जाती है जो बैक्टीरिया, फंगस और ऐसे ही अन्य परजीवियों को नष्ट करने का काम करती है। लेकिन इन दवाइयों के सेवन से त्वचा में एलर्जी, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से बिना सलाह लिए इन दवाइयों का सेवन करने से बचना चाहिए। जोड़ों के दर्द होने पर या किसी दुर्घटना में चोट लगने पर लोग दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे में जी मचलना, गैस की समस्या, पेट दर्द और लूज मोशन आदि। इसके अलावा ऐसी दवाइयां लेकर और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह लिए पेन किलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस आप घर पर बैठकर मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर की पर्ची के बिना सेल्फ मेडिकेशन काफी है तो आप गलत हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के कई नुकसान हैं, जिसका असर लंबे समय में जाहिर हो सकता है। बुनियादी तौर पर जब दवाइयाँ आपके शरीर में प्रवेश करती है तो तेजी से अवशोषित हो जाती है और प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। हो सकता है कभी आपको राहत मिल जाए या बाद में साइड इफेक्ट जाहिर हो। खरीदी गई हुई दवाएं बहुत नशीले और खतरनाक हो सकती है। मिसाल के तौर पर रेगुलर मिलने वाला कॉफ सिरप खासकर इलाज में बहुत मशहूर है। ऐसे कॉफ सिरप्स इस्तेमाल करने पर मरीज नींद से भरा हुआ महसूस करने लगता है, लेकिन अधिकतर लोग राहत के लिए ऐसे कॉफ सिरप ले लेते हैं। हमने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां कॉफ सिरप लेकर लोग नींद में चले जाते हैं और ये खासकर ड्राइवर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वर्तमान में ये सिरप डॉक्टर की सलाह पर बेचा जा रहा है। इसके विपरीत कई एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की पर्ची के साथ बेची जाती है। एंटीबायोटिक्स की खरीदारी डॉक्टर के सुझाव पर करनी चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसकी बिक्री को अपराध समझना चाहिए। कभी कभी लोग डॉक्टर के मशवरा के बिना पेन किलर को खरीद लेते हैं। शरीर में पहुंचने पर पेन किलर भविष्य में दर्द का कारण बन सकता है। सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन को रोका जा सकता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों की खरीदना छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से सेल्फ मेडिकेशन के खतरे से लोगों को अवगत कराया जा सकता है। सबसे ज्यादा अहम है, दुकानदार को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा की बिक्री रोकने के लिए शिक्षित किया जाए। पिछले सालों में लोगों के खानपान और हेल्थ केयर संबंधी आदतों में कई सारे बदलाव आए हैं। कोविड से बचाव में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों ने बिना डॉक्टर से बिना सलाह मशवरा किए इंटरनेट पर पढ़कर कई तरह के दवाइयों और मल्टीविटामिन का खुद से ही सेवन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें किडनी और लिवर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही गलत आदत है जो इन दो अंगों को ही नहीं बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। तो जान ले कौन सी दवाइयों को ज्यादा सेवन से किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि लोग बीमारी के साथ साथ खुद से दवा लेना साइड इफेक्ट भी झेल रहे होते हैं। इन्हें बाद में गलती का एहसास होता है, पर तब तक बॉडी पर इसका असर पड़ चुका होता है। खुद से दवा लेने के खास पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। शर्म या लिहाज के चलते महिलाएं खुद से ही दवा ले लेती है या परिवार को प्राथमिकता देने के चक्कर में वो अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं देती और खुद से इलाज शुरू कर देती है। ऐसी गलती न करें। कुछ लोग खुद से सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर आपको बता दें कि इससे भी आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सप्लीमेंट्स का असर हर शरीर पर अलग ढंग से होता है। अगर सही तरीके की बात की जाए, सप्लीमेंट्स लेने से पहले भी आपको कई टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे कई लोग प्रोटीन, विटामिन आदि सप्लीमेंट्स ले लेते हैं पर उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती, इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन आपको बीमार कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद से दवा ले लेना। जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उन्हें इसके नेगेटिव परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के असर से उल्टी, चक्कर आना, सिर में दर्द से लेकर मोटापा, कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए आप अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचे। उम्र और बीमारी के मुताबिक तय होता है दवा की डोज। डोज ऑफ मेडिसिन इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एज एंड डिजीज। आपने दवाओं पर नाम के साथ उसकी एमजी भी लिखी देखी होगी, जैसे 75 एमजी या 500 एमजी। ये दवा की डोज होती है। उम्र और बीमारी के मुताबिक डोज डॉक्टर तय करता है। अगर आपने छोटे बच्चे को हाई डोज दे दी तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। वही अगर हल्के बुखार में आपने हाई डोज ले ली तो आपको घबराहट या बेचैनी होगी। इसीलिए भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना खतरनाक है। वायरल होने पर या मलेरिया जैसे रोगों में भी लोग खुद से दवा ले लेते हैं जिनका प्रिस्क्रिप्शन उनके पास नहीं होता है। कई बार तो इन रोगों से बचने के लिए लोग पहले से ही दवा खाना शुरू कर देते हैं, पर इन दवाओं को खाने से आपको रोग नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिना

0: प्रिस्क्रिप्शन सप्लीमेंट्स खाने के नुकसान बहुत है दोस्तों। साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। टीवी पर एड देखकर या इंटरनेट पर पढ़कर लोग सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोचते हैं, पर आपको नेचुरल फूड से ही पोषक तत्वों की कमी पूरी करनी चाहिए। खुद से सप्लीमेंट्स लेना हानिकारक हो सकता है। उम्र बढ़ने पर पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसे पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की मदद ली जाती है, पर उसे डॉक्टर बताते हैं अगर आप खुद से ही इन्हें खाएंगे तो इनका बुरा असर आपकी हेल्थ और स्किन पर हो सकता है। कई बार हार्मोन का स्तर घटा या बढ़ जाता है, जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। खुद से दवा लेने पर लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सी दवाइयां लीवर को इफेक्ट करती है, इसीलिए डॉक्टर दवा के साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं, पर खुद से दवा लेने पर आपका लीवर डैमेज हो सकता है। अगर आप दर्द के लिए पेन किलर खा रहे हैं, तो लंबे समय तक इसका सेवन करने से आपके बाल झड़ सकते हैं, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, सुस्ती आना, मुंह सूखना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डिप्रेशन, मसल टाइटनेस एंड सोरनेस, ये सब पेन किलर से होते हैं। बुखार, खांसी या वायरल की दवा अगर आप खुद से लेते हो तो आपके पेट में गड़बड़, एसिडिटी, किडनी से जुड़े शिकायत आदि हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक केमिस्ट की बताई हुई दवा भी न ले। कई बीमारियों में जांच की जरूरत होती है। दवा के साइड इफेक्ट तुरंत न दिखे, पर आपको बाद में खुद से दवा लेने के दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है, इसीलिए डॉक्टर की मदद ले। With this very useful information about the harmful effects of self-diagnosing and self-medication, this is Chetan wrapping up for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 11वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। 5:00 तमिल कार्यक्रम में बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा सिरुवर पोंगा। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में आधुनिक गीत सुनवाए जाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:00 आप डॉक्टर वीबी पांडे के साथ की गई बातचीत सुनेंगे। विषय होगा द्वीपों में शकरगंद की खेती। 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए दर्द भरे नगमे। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुनेंगे 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युववाणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। चित्रपट संगीत, फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार, तत्पश्चात सुनिए गौरवगान। और रात 10:00 100.9 MHz FM पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत, जबकि उसी समय प्राइमरी चैनल पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सरगम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स में जानेंगे गमला में सब्जी की खेती के बारे में सुबह 5:55 पर। सुबह 6:10 पर जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा चाय शीर्षक पर, जिसे आप सुनेंगे 6:15 पर।

6:30 पर रामचरितमानस गान आप सुन सकेंगे। वतन के गीत का समय रहेगा 6:40। 6:50 पर मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण आप सुनेंगे। सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। सात बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप विभिन्न कलाकारों को सुन सकेंगे। तराने सुहाने कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में मैंडोलिन वादन आप सुनेंगे। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम SMS My Choice का आनंद लीजिए सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में सुपरहिट सॉन्ग्स सुनवाए जाएंगे। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। एक बजकर 10 मिनट पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप बेला सावरे को सुनेंगे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम आप सुनेंगे 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर नॉन स्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें सूचनाओं के अलावा कुछ पुराने गीत आप सुन सकेंगे। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 12वीं कड़ी सुन पाएंगे। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। 4:45 से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:45 हुए हैं, अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म इंग्लिश बाबू देसी मेम से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, जिसकी गीत रचना की है योगेश ने और संगीत दिया निखिल विनय ने।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए अब सुनते हैं इब्राहिम अश्क की गीत रचना, जिसे गाया है अलका याग्निक और अभिजीत ने। फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए हेमा सरदेसाई और सुखविंदर सिंह की आवाजों में समीर का लिखा एवं प्रीतम का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म गरम मसाला का ये गीत।

हेमा सरदेसाई और सुखविंदर सिंह के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।

0: अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।
1: कर्म करे जाओ फलेर प्रत्याशा करो ना, भगवद गीता। नमस्कार बंधुरा, आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र थेके प्रचारित बांगला अनुष्ठाने आपनादेर सकलके जानाई स्वागत। আজ রয়েছে আধুনিক গানের আসর সঞ্চারী।

अभी आपने सुना बांग्ला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान बहनों और भाइयों को वर्षा का नमस्कार और आज के इस अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और हम निराश होकर ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए साथियों, जब आपके मन का नहीं होता तो वो ईश्वर के मन का होता है और ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। जो आज आपको बिखराव लग रहा है, हो सकता है वो ईश्वर द्वारा किसी नई और बेहतर शुरुआत की तैयारी हो। बस ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे, वो जो भी करेगा आपके हित में ही करेगा। इन्हीं नेक विचारों के साथ चलिए अब हम बढ़ते हैं खेती किसानी की ओर। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और हमारा आज का प्रश्न है, नारियल के पौधों को कितनी गहराई में रोपना उचित रहता है, ये आपको बताना है। प्रश्न एक बार फिर सुने, नारियल के पौधों को कितनी गहराई में रोपना उचित रहता है। साथियों, आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए, कार्यक्रम के अंत में हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: द्वीपों में शकरकंद की खेती, इस संदर्भ में आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर वीबी पांडे जी से। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत।
2: डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम।
3: धन्यवाद।
2: और डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम शकरकंद की खेती के बारे में आपसे विस्तार से जानें, सबसे पहले आप ये बताएं कि हमारे इन द्वीपों में शकरकंद की खेती की क्या स्थिति है।
3: किसान भाई, आप लोग तो शकरकंद से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि सभी लोग शकरकंद बड़े चाव से खाते हैं। शकरकंद में काफ़ी पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसमें कैलोरी तो आलू से भी ज़्यादा मिलती है।
2: जी जी।
3: और शकरकंद में जो है विटामिन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मिलता है। जी, इसके अतिरिक्त इसमें जो है 15-28% तक स्टार्च भी पाया जाता है। शकरकंद को प्रायः उबालकर या आग पर भूनकर उपयोग में लाते हैं, परंतु इन द्वीपों में शकरकंद की उपज उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके कई कारण हैं।
2: जी जी।
3: जैसे उचित समय पर इसका रोपण नहीं करना, सही समय पर उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना, फसल के कीड़ों एवं बीमारियों से रक्षा के लिए सही समय पर उचित कदम नहीं उठाना
2: जी,
3: तथा सूखे के समय में वर्षा के अभाव में समुचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं करना, और अगर किसान भाई अच्छी किस्मों का प्रयोग करें, उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग सही समय पर करें और कीड़ों एवं बीमारियों की रक्षा के लिए उचित प्रबंधन करें तथा वर्षा के अभाव में सूखे के समय में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करें, तो इन द्वीपों में शकरकंद की फसल से बहुत अच्छी पैदावार
2: मिल सकती है। यानी ये जो तमाम बातें, इन पर अगर किसान भाई गौर

0: करें
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: उत्पादन अच्छा हो सकता
1: जी
0: है।
1: जी जी जी जी
0: डॉक्टर साहब, आप बताएं कि हमारे इन द्वीपों में अगर किसान भाई शकरकंद की खेती करना चाहें तो
1: जी
0: उचित किस्में कौन कौन सी होनी
1: जी
0: चाहिए?
1: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जहाँ तक शकरकंद की किस्मों का सवाल है, इन द्वीपों में किसान भाई शकरकंद की स्वर्णा एवं अपर्णा किस्में, जो कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान से विकसित की गई
0: अच्छा
1: हैं, लगा सकते हैं। अच्छी उपज देती हैं, करीब
0: अच्छा
1: 22 से 24 टन प्रति हेक्टेयर उपज देती है।
0: अच्छा ये जो दो किस्मों का
1: जी
0: आपने जिक्र किया, स्वर्णा और अपर्णा,
1: जी
0: तो इसको मतलब आपके संस्थान में पूरी तरह से जांचा परखा
1: जी
0: गया है,
1: जी जी जी
0: यहाँ की
1: जी
0: जलवायु के लिए पूरी तरह से
1: जी
0: ये उपयुक्त
1: जी
0: है।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, शकरकंद की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए मिट्टी और जलवायु जो होनी चाहिए
1: जी
0: वो कैसी होनी चाहिए कि हमारे इन द्वीपों में ये उपयुक्त है ये?
1: जी हाँ, जहाँ तक है कि मिट्टी और जलवायु दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हैं इसकी खेती के लिए।
0: अच्छा
1: तो इन द्वीपों में शकरकंद की जो है अच्छी पैदावार लेने के लिए जो है बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है,
0: अच्छा
1: परंतु इन द्वीपों में शकरकंद की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है जिसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था हो।
0: अच्छा यानी पानी रुकना नहीं चाहिए।
1: पानी नहीं रुकना चाहिए।
0: अच्छा
1: जी जहाँ तक जलवायु का सवाल है, इन द्वीपों की जलवायु शकरकंद की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है, जिसके परिणाम स्वरूप इन द्वीपों में शकरकंद की वर्ष भर में 3 फसलें ली जा सकती हैं।
0: अच्छा
1: वर्षा में भी ली जा सकती हैं, रबी में भी, और गर्मी, तीनों फसलें अच्छी आती हैं।
0: अच्छा मतलब गर्मी के मौसम में अगर सिंचाई की व्यवस्था हो तब
1: जी
0: खेती हो सकती
1: जी
0: है।
1: जी जी जी
0: डॉक्टर साहब, शकरकंद में जो पौधों का प्रसारण होता है, प्रोपोगेशन
1: जी
0: होता है, ये कैसे होता है?
1: जी ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। अब प्रायः इन द्वीपों में पौधों का प्रसारण लता के द्वारा ही होता है।
0: अच्छा
1: शकरकंद की कंद के द्वारा भी कर सकते हैं, उसमें अंकुरण निकलता है, उसको प्राथमिक नर्सरी में उसको लगाते हैं, फिर सेकेंडरी नर्सरी में लगाते हैं, फिर उसको प्रत्यारोपित करते हैं, तो इसमें करीब 3 महीने का समय लग जाता है।
0: अच्छा हाँ
1: तो अगर लता के द्वारा अगर इसका प्रसारण करते हैं तो 45 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती
0: अच्छी
1: है।
0: बात है। हाँ
1: तो मुख्य फसल पुरानी इनकी जो है, जो लता ली जाती है वो पुराने पौधों से ली जाती है। तो मुख्य फसल के प्रत्यारोपण से, जो इसे हमको जून जुलाई में लगाना है बरसात की फसल, तो करीब 45 दिन पहले
0: अच्छा
1: 20 से 30 सेंटीमीटर की लता को नर्सरी में प्रत्यारोपित करते हैं। इसके लिए 1 हेक्टेयर ज़मीन में लगाने के लिए लगभग 500 स्क्वायर मीटर ज़मीन में नर्सरी बनाते हैं।
0: अच्छा
1: उसमें नर्सरी बनाने के लिए करीब 5 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद मिलाकर ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, और इसके बाद मेड़ बनाकर पंख से पंख की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा एक लता से दूसरे लता की दूरी 20 सेंटीमीटर रखकर जो है गाड़ते हैं।
0: अच्छा
1: और इसकी वानस्पतिक वृद्धि बढ़ाने के लिए चारा गाड़ने के 15 दिन बाद पुनः जो है 2.5 किलोग्राम यूरिया उस नर्सरी में डालकर मिलाते हैं।
0: अच्छा
1: उसके फिर 15 दिन बाद,
0: यानी
1: यानी
0: 30 भी दिन
1: चारा गाड़ने से 30 दिन बाद पुनः जो है 2.5 किलोग्राम यूरिया उस नर्सरी में मिलाकर मिला देते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: और तुरंत सिंचाई करते हैं वर्षा के अभाव में। फिर जो है 1 दिन छोड़ के 1 दिन सिंचाई करते हैं। तो इस प्रकार लता जो है 45 दिन के अंदर जो है वो मुख्य भूमि में जो है वो प्रतिरोपित करने के योग्य हो
0: तैयार हो
1: जाती है,
0: जाती है।
1: तैयार हो
0: अच्छा
1: जाती है।
0: यानी शकरकंद के लिए नर्सरी की तैयारी भी किसानों को करनी पड़ती है और
1: जी
0: 45 दिन की अवधि नर्सरी की होती है।
1: जी
0: अच्छा जब मुख्य खेत में लगाना होता है तो हमारे इन द्वीपों में कब लगाएं, कैसे लगाएं, इस बारे में भी ज़रा बताएं।
1: जी जी ऐसा जहाँ तक शकरकंद लगाने का सवाल है, ज़मीन की अच्छी जुताई करके मिट्टी भुरभुरी बना लें, फिर उसमें करीब 100 से 125 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद अवश्य मिलाएं। फिर वर्षा ऋतु एवं रबी की फसलों के लिए मेड़ बनाएं, परंतु गर्मी की फसल की रोपाई समतल ज़मीन पर भी कर सकते हैं।
0: अच्छा वो
1: जी
0: मेड़ इसलिए कि पानी
1: पानी
0: ना
1: नहीं
0: भर,
1: लगेगा
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: गर्मी
0: हाँ
1: के दिन में। रोपाई के लिए नर्सरी से 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी लताएं काट लेते हैं।
0: अच्छा
1: 20 से 30 सेंटीमीटर लता जो है लंबी काटते हैं। उन्हें प्रतिरोपित करने के लिए पंख से पंख की दूरी 60 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखकर प्रतिरोपित करते हैं। तो इन लताओं की रोपाई वर्षा ऋतु की फसल के लिए जून जुलाई में करते हैं।
0: अच्छा
1: अभी देखिए, हम बताएं कि 45 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, अभी जो है मई की शुरुआत है, तो जून जुलाई में रोपित करने के लिए आराम से चारा तैयार कर
0: कर
1: सकते हैं।
0: सकते हैं
1: जी
0: जी।
1: जबकि रबी फसल के लिए रोपाई सितंबर अक्टूबर में करते हैं, वह गर्मी के फसल की रोपाई दिसंबर जनवरी में कर सकते हैं।
0: अच्छी बात है। अतरक साहब, शकरकंद की खेती की जो देखभाल की जहाँ तक बात होती है
1: जी
0: तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किसान भाई कब करें, कैसे करें?
1: जी ऐसा है, रोपाई से पहले खेत तैयार करते समय खेत में जो है, मैंने पहले भी बताया कि 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद मिला लें,
0: जी हाँ
1: साथ ही साथ उसमें 50 किलोग्राम यूरिया, 150

0: किलोग्राम सुपर फास्फेट सिंगल व 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में भली प्रकार मिला लें, जब खेत तैयारी करते हैं
1: अच्छा
0: प्रतिरोपण
1: जी
0: के लिए
1: जी
0: उसी
1: हाँ
0: समय मिला दें। उसके बाद लता का प्रतिरोपण कर दें, वर्षा न हो तो उस समय सिंचाई कर दें, और रोपाई के 25 दिन के बाद घास फूस निकल आते हैं
1: जी
0: जिसकी निराई गुड़ाई करके नाली में पुनः जो है 50 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सुपर फास्फेट सिंगल व 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में भली प्रकार मिलाकर, और वर्षा न हो तो फिर सिंचाई कर दें तथा 2 दिन के अंतराल में सिंचाई अवश्य करते रहें
1: अच्छा, तो इस तरह
0: वर्षा के
1: से
0: अभाव में।
1: खाद एवं
0: जी
1: उर्वरकों का प्रयोग किया जा
0: जी
1: सकता
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: और जहाँ तक फसल सुरक्षा का सवाल है, तो कीड़े और बीमारियाँ इनमें कैसी लगती है?
0: ऐसा इन द्वीपों में शकरकंद की फसलों में जो है कोई खास कीड़े बीमारियों का प्रकोप नहीं देखा गया है,
1: अच्छा
0: परंतु अगर फसल की खुदाई 120 दिनों के अंदर न की जाए तो जो ट्यूबर होता है उसमें वीविल का प्रकोप हो जाता है,
1: अच्छा
0: काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर कार्बिल को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, शकरकंद की फसल में कभी कभी लीफ स्पॉट देखा जाता है जिसमें पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं
1: जी
0: जो फोलियोज को नुकसान पहुँचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए 2.5 ग्राम डाइथेन M45 को 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव
1: छिड़काव किया
0: करें।
1: जा सकता है।
0: जी जी जी
1: और जैसे कि आपने बताया, कोई खास बीमारी
0: नहीं,
1: और
0: यहाँ पर नहीं
1: कीड़ा
0: देखी
1: यहाँ
0: गई है
1: नहीं है।
0: शकरकंद की खेती।
1: और डॉक्टर साहब, आखिर में फसल की खुदाई बहुत अहम बात होती है, तो
0: जी
1: इस बारे में आपकी क्या सलाह होगी?
0: ऐसा इन द्वीपों में शकरकंद की फसल लगभग 120 दिनों में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है जिसकी खुदाई की जा सकती है, और खुदाई में विलंब करने से इन द्वीपों में ट्यूबर में विविल का प्रकोप होता है
1: जी।
0: तो जो ट्यूबर को भारी क्षति पहुंचाते हैं, परिणाम सब उपज कम मिलती है। इसलिए शकरकंद की खुदाई 120 दिनों के अंदर अवश्य करें, और अपनी फसल से किसान भाई जो है इसका 220 से 240 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकता है।
1: तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जितनी बातें बताई शकरकंद की खेती के बारे में, इस बारे में आप ज़रूर गौर करेंगे। और अभी मौसम है, आप नर्सरी लगा सकते हैं, जून जुलाई में रोपाई हो सकती
0: जी
1: है जैसे कि आपने बताया,
0: जी
1: और इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करेंगे। तो डॉक्टर
0: जी
1: साहब, आप कार्यक्रम में आए, इतनी बातें हुई, धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।

अभी आप डॉक्टर वीबी पांडे जी से द्वीपों में शकरकंद की खेती के विषय में ये बातचीत सुन रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत को आपने ध्यान से सुना होगा। साथियों, अब हम अपने कार्यक्रम का रुख मोड़ते हुए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आपने ये गीत सुना और हम आशा करते हैं कि इस गीत को आपने जरूर सराहा होगा। मिश्रित कृषि प्रणाली, इस संदर्भ में आइए अब हम आपको देते हैं ये छोटी सी जानकारी।
1: किसान साथियों, अब हम कुछ चर्चा करते हैं मिश्रित कृषि प्रणाली के संदर्भ में। समय के साथ साथ खेती बाड़ी की विभिन्न प्रणालियां विकसित हुई हैं, जिनसे कि हमें लाभ होता है। मिश्रित खेती में विभिन्न फसलों को हम एक साथ उगाते हैं। विभिन्न फसलों की वृद्धि का क्रम, उनकी जड़ों की गहराई और उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। यदि दो फसलें जिनमें एक फसल उथली जड़ वाली तथा दूसरी गहरी जड़ वाली हो, तो दोनों मिट्टी की ऊपरी सतह से नमी व उर्वरकों का भरपूर अवशोषण तथा उपयोग करती हैं। इस प्रकार जल और पोषक तत्वों की क्षमता बढ़ने से उनकी उपज बढ़ जाती है। विभिन्न ऊंचाइयों में बढ़ने वाली फसलों के मिश्रण में कम बढ़ने वाली फसलें ऐसी होनी चाहिए जिसे प्रकाश की कम तीव्रता की आवश्यकता हो। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कुछ मिश्रण

0: अधिक सफल होता है, जबकि कुछ इतना लाभ नहीं दे पाता। नारियल, केला और अदरक मिश्रित फसल प्रणाली में सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग होता है, जिसमें तीनों फसलों की अधिक उपज प्राप्त होती है। नारियल के बागानों से आप केला अदरक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अदरक की फसल को सीधे सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती और नारियल के पेड़ इतने बड़े होते हैं कि उनके नीचे आप केले की खेती आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है कि कुछ फसलें ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जो दूसरी फसलों के लिए लाभप्रद साबित होता है। उदाहरण के तौर पर मूंग की फसल को ज्वार के साथ उगाया जा सकता है तो मूंग की जड़ों की गांठों में एकत्रित नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा ज्वार को मिल जाता है, जिससे ज्वार की उपज बढ़ जाती है और ऊंचे तथा मजबूत तनों वाली फसलों के साथ बेल वाली फसलों को बोना उपज की दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इस फसल मिश्रण में मजबूत बेलों वाली फसलों की बेलों को ऊपर चढ़ने में मदद कर उनके फलन को बढ़ा देती हैं। ऊंचे कंद वाली फसलों की छाया ऐसे फसलों के लिए लाभप्रद हो जाती है जिन्हें कड़ी धूप की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अरहर और अनानास, अरहर हल्दी, अरहर अनानास आदि का मिश्रण। अनानास, हल्दी और अदरक ऐसी फसलें हैं जिन्हें धूप की आवश्यकता नहीं होती। किसान भाइयों, कुछ फसलों की उपस्थिति उनकी सहयोगी फसलों को कीड़ों के आक्रमण से भी बचाती है, जैसे मक्का की फसल में ज्वार, लाल मिर्च में सौंफ आदि। अंतर्वर्ती खेती मिश्रित खेती का ही एक रूप है। मिश्रित खेती में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को साथ साथ किसी निश्चित कतार के बिना लगाने की पद्धति है। इसके विपरीत मिश्रित फसल प्रणाली में किसी निश्चित कतार में ही दो या दो से अधिक फसल लगाई जा सकती हैं। अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली, जिसका उद्देश्य आय में वृद्धि करना है, और दोनों ही पद्धतियों से आजकल खेती की जाती है ताकि किसानों को आर्थिक रूप से लाभ हो। अंतर्वर्ती कृषि मिश्रित खेती का ही एक रूप है। इसमें एक ही खेत और एक ही मौसम में दो अलग अलग फसलों को साथ साथ किसी निश्चित कतार के बिना लगाने की पद्धति है। इसके विपरीत मिश्रित कृषि में दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित कतार में लगाया जाता है। दोनों ही पद्धतियों का उद्देश्य है किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचे और उनके प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर प्रयोग हो।
1: मिश्रित कृषि प्रणाली, इस विषय में अभी आपने ये छोटी सी जानकारी हासिल की।

0: साथियों, अभी आपने ये गीत सुना और हम उम्मीद करते हैं कि इस गीत को आपने ज़रूर पसंद किया होगा। किसान साथियों, अब वक्त हो चला है आज पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर बताने का। और कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे पूछा था, नारियल के पौधों को कितनी गहराई में रोपना उचित रहता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, नारियल के पौधों को 1 घन मीटर के गड्ढे में 60 सेंटीमीटर गहराई में रोपना उचित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर लिया होगा।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान साथियों, अगर हम घड़ी की ओर देखें तो समय हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे पा रही है, इसलिए हमें लेना होगा आपसे विदा। लेकिन कल शाम 6 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

वो रातें जो तेरे बगैर गुजरी हैं, हर एक लम्हा सदियों की तरह भारी था। आँखों से बहते रहे आंसू रात भर, बस तेरी यादों का ही सिलसिला जारी था।

अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे।

तेरी रहमतों के साए में हर मुश्किल आसान हो जाए, तू थाम ले मेरा हाथ तो हर राह मेरी पहचान हो जाए। हम गुनहगार हैं तेरे दर के ऐ मेरे परवरदिगार, बस तेरी एक नज़र से मेरा बेड़ा पार हो जाए।

तेरे जाने से कुछ इस तरह मेरी दुनिया तबाह हो गई। तू क्या रूठा मुझसे जैसे मेरी हर खुशी गुमशुदा हो गई। ना तू पूरी तरह मिला ना ही दिल से मेरे जुदा हुआ। तुझे ढूंढते ढूंढते देख आज मेरा खुदा भी मुझसे खफा हुआ।

ना जाने कैसे तू मुझे पल भर में भूल जाती है, तेरी याद आकर इस दिल को बड़ा रुलाती है। सूना करके मेरा आंगन, ना जाने क्यों तू मुझसे इतना दूर चली जाती है।

मिला है दर्द तुमको तो दिल मेरा भी हारा है, ज़माने की इस बेबसी ने हमको भी मारा है। चलो मिलके मिटा दे इस गम को कि कोई बात बदले, थाम लो हाथ मेरा ताकि आज अपनी कायनात बदले।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम
1: ए
0: दर्द भरे
1: मेहमान।
0: नगमे अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।

श्रोताओं, आपको बता दें, 7:15 पर आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, आप सुनेंगे 7:20 पर।

श्रोताओं, ये तो थे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। और अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 6:10 पर जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा चाय शीर्षक पर, जिसे आप सुनेंगे 6:15 पर।

दिन के 11:30 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। एक बजकर 10 मिनट पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप बेला सवेरे को सुनेंगे।

0: व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम आप सुनेंगे 1:30 पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली दौरे पर भारतीय संस्कृति प्रेम और वाराणसी पर चित्रकला बनाने वाले कलाकार की प्रशंसा की। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर केंद्र सरकार के फैसलों को नीतिगत अधिकार बताया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर 24 मई को लाल किला मैदान में होगा जनजाति सांस्कृतिक समागम। और कला एवं संस्कृति विभाग और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सहयोग से जून में एक महीने की रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासेट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासेट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतावली कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की।
1: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती, इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस बातचीत का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करना है। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। यह बातचीत भारत और इटली के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है, जिसमें आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को विस्तार देने पर विशेष बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत और यूरोप के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में इटली के सहयोग की सराहना की। उन्होंने उभरती टेक्नोलॉजी, विनिर्माण तथा सतत विकास के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के साथ साथ अपने कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुबंध के आधार पर सागर मित्र की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र प्रशासन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मई है। अधिक जानकारी के लिए जोनल मत्स्य कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है जयंती और रंगमंच कार्यशाला का आयोजन।

आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जनजाति सांस्कृतिक समागम के अवसर पर 24 मई को महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के लाल किला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस समागम में देश भर के 500 से अधिक जनजातियों के 1.5 लाख प्रतिभागियों के उपस्थित होने की संभावना है। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो 5 विभिन्न स्थलों से प्रारंभ होकर जनजातीय परंपराओं का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये यात्रा लाल किले पर संपन्न होंगी जहां गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कला एवं संस्कृति विभाग द्वीपों के युवाओं और आम जनता के बीच थिएटर को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास के तहत जून में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से 1 महीने तक चलने वाली थिएटर कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य रचनात्मकता को प्रेरित करना, अनुशासन की भावना जगाना और प्रदर्शन कलाओं के प्रति सराहना विकसित करना है जिससे द्वीपों की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हो सके। इस संबंध में द्वीपों के निवासियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यशाला में केवल 30 व्यक्तियों को ही शामिल किया जाएगा और चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह न केवल कलात्मक कौशल को निखारेगा बल्कि प्रतिभागियों के बीच आत्मविश्वास, टीम भावना और सांस्कृतिक जागरूकता को भी बढ़ावा देगा। अधिक जानकारी सेलुलर जेल परिसर स्थित कला एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त की जा सकती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर देशभर में वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि मधुमक्खियां पर्यावरण संरक्षण, कृषि उत्पादकता और जैव विविधता की महत्वपूर्ण संरक्षक है। उन्होंने बताया कि KVIC ने वर्ष 2017 में शुरू किए गए हनी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक देश भर में 2,46,000 से अधिक मधुमक्खी बक्सों और मधुमक्खी कॉलोनियों का वितरण किया है। श्री कुमार ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 में KVIC से जुड़े मधुमक्खी पालकों द्वारा लगभग 31 करोड़ रुपए मूल्य के शहद का निर्यात किया गया। भारतीय शहद अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों तक पहुंच रहा है। पुलिस विभाग में विभिन्न ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई की मध्यरात्रि कर दी गई है। पात्रता की शर्तें और अन्य निर्देश संदर्भ के लिए उपलब्ध पूर्ण भर्ती सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 28 मई की मध्यरात्रि तक किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा 22 मई को शाम 5:30 बजे से हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम में डेंगू लक्षण और उपचार विषय पर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर बी अजीत कुमार स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फोन नंबर 2456662 और 2447455 पर कॉल कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली दौरे पर भारतीय संस्कृति प्रेम और वाराणसी पर चित्रकला बनाने वाले कलाकार की प्रशंसा की। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर केंद्र सरकार के फैसलों को नीतिगत अधिकार बताया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर 24 मई को लाल किला मैदान में होगा जनजाति सांस्कृतिक समागम और कला एवं संस्कृति विभाग और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सहयोग से जून में 1 महीने की रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। अतः मछुआरों को 22 मई तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है।

से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। अतः मछुआरों को 22 मई तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल, और अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV बाराटांग मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए 22 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 23 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर MV भारत सीमा के स्थान पर अब MV सेंटिनल 22 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान अगले दिन 23 तारीख को सुबह 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल 21 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा तथा कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। MV रानी चंगा कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV स्ट्रेट आइलैंड कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर MV कमोटा कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इस जलयान की वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। और MV हडबे कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा। वापसी अगले दिन 22 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

जलियानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ। जन सूचनाएं।

दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैर कानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 0319224017, 0319223888 या 1070। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531888844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में पहले सुनिए रेखा और सपन चक्रवर्ती के स्वरों में खूबसूरत फिल्म का गाना, जिसके बोल लिखे हैं गुल

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

सोचो, नहीं सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े, और नल खोलो तो कॉफी।

और अब अंत में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसकी धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। गायक कलाकार है किशोर कुमार और आशा भोसले। फिल्म है मैं सुंदर हूँ।

किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा दोस्तों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, समय जीवन का सबसे मूल्यवान धन है, जिसे एक बार खो देने पर वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए हर पल का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वही अपने सपने को

आकार कर पाता है। आलस्य और टालमटोल हमें केवल पीछे की ओर ले जाता है, जबकि मेहनत और अनुशासन हमें आगे बढ़ाते हैं। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष आज के दिन यानी 20 मई को मनाई जा रही है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को मधुमक्खियों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। मधुमक्खियाँ प्रकृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे केवल शहद ही नहीं देती, बल्कि फसलों और पौधों के पराग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया की लगभग एक तिहाई खाद्य फसलें मधुमक्खियाँ द्वारा किए गए परागण पर निर्भर करती है। दोस्तों, आज के समय में प्रदूषण, जंगलों की कटाई, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण मधुमक्खियों की संख्या तेजी से कम हो रही है। यह स्थिति पर्यावरण और मानव जीवन दोनों के लिए चिंता का विषय है। यदि मधुमक्खियां समाप्त हो जाए तो खाद्य उत्पादन में गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और जैव विविधता भी प्रभावित होगी। विश्व मधुमक्खी दिवस हमें यह संदेश देता है कि हमें प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधे लगाना, रसायन कीटनाशकों का कम उपयोग करना और प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम है। दोस्तों, मधुमक्खियाँ मेहनत, अनुशासन और संयोग का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए हमें उनसे प्रेरणा लेकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कसौनी नामक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। प्रकृति के प्रति उनका गहरा प्रेम उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देता है। बचपन से ही उन्हें प्रकृति की सुंदरता ने बहुत प्रभावित किया, इसलिए उनकी रचनाओं में पर्वत, पेड़ पौधे, फूल और प्राकृतिक दृश्य अत्यंत सुंदर रूप में वर्णित मिलते हैं। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण थी। उनकी प्रमुख कृतियों में पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्या विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उनकी कविताओं में प्रेम, मानवता, प्रकृति और राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की जयंती हमें हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा और प्रकृति प्रेम का संदेश देती है। उनका जीवन और साहित्य आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करता है। वे केवल एक महान कवि ही नहीं, बल्कि संवेदनशील विचारक और मानववादी भी थे। हिंदी साहित्य में उनका नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा।

दोस्तों, आज बुधवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

दोस्तों, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रोज स्कूल जाता और खाली समय में अपने पिता की खेतों में मदद करता। गांव के लोग अर्जुन की सच्चाई और मेहनत की बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया। मेले में बहुत भीड़ थी, तरह तरह की दुकानें लगी थी और चारों ओर खुशियों का माहौल था।

अर्जुन घूमते घूमते एक पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसे एक चमड़े का बटुआ पड़ा मिला। उसने बटुआ उठाकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागज थे। उसके दोस्त बोले, अर्जुन, इतने सारे पैसे हैं, अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अर्जुन ने कहा, यह मेरे पैसे नहीं है। जिसने यह बटुआ खोया होगा वह बहुत परेशान होगा। मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, पर अर्जुन उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना बटुआ लेकर मेले में घोषणा करने वाले व्यक्ति के पास गया। उसने पूरी बात बताई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी घबराया हुआ वहां आया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि उसका बटुआ खो गया है।

दोस्तों अर्जुन ने तुरंत बटुआ उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तुम बहुत ईमानदार हो, आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उसने अर्जुन को इनाम देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। वह बोला, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया।

दोस्तों, यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के प्रधान ने अर्जुन की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे अर्जुन ने मेहनत और लगन से पढ़ाई की और बड़ा होकर एक सफल अधिकारी बना। कई वर्षों बाद जब अर्जुन गांव लौटा तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। अर्जुन ने गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा विद्यालय बनवाया ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। उस दिन अर्जुन ने बच्चों से कहा, जीवन में धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण ईमानदारी और अच्छे संस्कार होते हैं। पैसा कभी भी खो सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र हमेशा इंसान को सम्मान दिलाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन में अवश्य सफल होता है।

दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए फिल्म ज्वेल थीफ के एक गीत के साथ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

0: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
1: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स, TNC अप्लाई।
2: आप प्रस्तुत है गीता दत्त की आवाज़ में गुलजार का लिखा एवं कानू रॉय का संगीत बद किया हुआ फिल्म अनुभव का ये गीत।

अगले गीत में खयाम के संगीत को शब्द दिए गीतकार गुलजार ने, आवाज़ है मुकेश की और ये गीत है फिल्म कभी कभी का।

और अब कार्यक्रम के अंत में एक मुसाफिर एक हसीना सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा है SH बिहारी ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा, बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहनशक्ति परीक्षण PMET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन PR अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित में रेडियो ऑपरेटर ASI के लिए कुल पद है 71, 36 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 24 पद OBC वर्ग के लिए।

0: होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 4 पद रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद है। रेडियो टेक्नीशियन ASI के लिए कुल पदों की संख्या है 12। 6 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 4 पद OBC वर्ग के लिए होगा तथा अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1-1 पद है। सिपर ऑपरेटर ASI के लिए कुल पद है 2। अनारक्षित वर्ग और OBC वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है। ग्रुप सी में फिटर इलेक्ट्रीशियन HC केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। कुल पदों की संख्या 4 रखा गया है। अनारक्षित वर्ग और OBC वर्ग के लिए 2-2 पद है। कांस्टेबल VHF ऑपरेटर पद के लिए 1 पद है जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। डीजल मैकेनिक केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए होगा। कुल पद है 2। अनारक्षित वर्ग और OBC वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है। फॉलोअर मैसेंजर के लिए पदों की संख्या है 16। अनारक्षित वर्ग के लिए 9 पद, OBC वर्ग के लिए 6 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1 पद है। पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट PMT अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी सब इंस्पेक्टर PMT पद के लिए कुल पदों की संख्या है 2 जो OBC वर्ग के लिए है। ग्रुप सी डीलिंग असिस्टेंट HC और स्टोर कीपर HC के लिए 1-1 पद रखा गया है जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। असिस्टेंट मैकेनिक PC के लिए 2 पद हैं। अनारक्षित और OBC वर्गों के लिए 1-1 पद है। मैकेनिक हेल्पर PC पद के लिए 2 पद हैं जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए पदों की संख्या है 15। अनारक्षित और OBC वर्गों के लिए 7-7 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है। पुलिस मैरीन फोर्स PMF अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए कुल पद है 2। अनारक्षित और OBC वर्गों के लिए 1-1 पद है। ग्रुप सी पुलिस कांस्टेबल ग्रीजर के लिए कुल पद है 4। OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2-2 पद रखा गया है। पुलिस कांस्टेबल लस्कर के लिए 7 पद कुल है, 3 पद अनारक्षित वर्ग के लिए। OBC और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 1-1 पद रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। EWS, MSP, ESM भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़े।
1: पुलिस विभाग में विभिन्न ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई की मध्य रात्रि तक कर दी गई है। पात्रता की शर्तें और अन्य निर्देश संदर्भ के लिए उपलब्ध पूर्ण भर्ती सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए संशोधन खिड़की 28 मई की मध्य रात्रि तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर

0: सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का द डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है।
1: इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
2: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू। स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
3: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स। TNC अप्लाई।
4: सम कार्स आर डिजाइन टू ब्लेंड इन, अदर्स आर डिजाइन टू बी रिमेम्बर्ड। मिड द Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
5: Nexa.
6: लीजिए अब सुनिए संवेद स्वर में गौरव गान।

अभी आप संवेद स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को

0: बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता

0: हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals,

बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा

0: साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
3: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जैसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
1: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं। पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी

0: को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
1: डॉक्टर अंक्रोमा हैड सेड एंड आई कोट, आई एम नॉट अफ्रीकन बिकॉज आई वॉज बोर्न इन अफ्रीका बट बिकॉज अफ्रीका वॉज बोर्न इन मी। इन द सेम वे इंडिया कैरी अफ्रीका इन इट्स हार्ट। इंडिया एंड अफ्रीका शेयर अ ड्रीम वेर एवरी चाइल्ड गेट अपॉर्चुनिटीज, वेर एवरी वॉइस इज हर्ड, वेर नेशंस राइज टूगेदर नॉट अ पार्ट। लेट अस बिल्ड अ पार्टनरशिप नॉट ओनली फॉर टूडे बट फॉर जनरेशंस टू कम।
2: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
4: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
2: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
3: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट

0: यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक सीडीआरआई है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे, जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
1: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव, वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस, वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, वी विल डिस्कस regulatory issues and promote common standards, we will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms, we will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy, technology is evolving, costs are coming down and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
2: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। कोविड 19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
2: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है, और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया।

0: था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ, जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं हैं, और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं, जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का, अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना, भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
0: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा, हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
0: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु

0: फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
1: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
2: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम।

कार्यक्रम में पहले सुनवा रहे हैं कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाजों में अजनबी फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक।

अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फितूर फिल्म का गीत। स्वानंद किरकिरे के लिखे बोलो को सुरों में ढाला है अमित त्रिवेदी ने।

तनिष्क बागची के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए अब सुनते हैं शब्बीर अहमद की लिखी रचना। गायक कलाकार है आर्को, फिल्म का नाम है बरेली की बर्फी।

अब सुनते हैं शाहिद माल्या के आवाज़ में उड़ता पंजाब फिल्म का एक गीत, और इस गीत को लिखा है शिव कुमार बतलवी ने और इस गीत को सुरों से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

अब पेश है रसिका शेखर और शंकर महादेवन की आवाज़ों में कट्टी बट्टी फिल्म का गाना। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से नवाजा है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मैरी कॉम फिल्म का गाना अरिजीत सिंह के स्वर में। गीत रचना शिवम की व संगीत है संदीप सिंह का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। अतः मछुआरों को 22 मई तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 और 22 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यही समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 31वीं तिथि यानी 21 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28.40 हुए हैं। हमारी पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।